0: बसंत को माया लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता, कसे कसे ले तीतो मीठो ब्याधर तो दिए के होलन है ना। हो ती आधरू नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो।

0: पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चलना हमारे साथ,
0: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
2: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में, आज जस्ट

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे बुझने से पहले उसे पटाख के तो जा।
0: क्या

0: होई नै आज पूरा तेही आंसू खाता अपन खटिया बिछाला पलाहनी में
1: तेरा जगर बड़े बुझे है नदानी में पड़ी दे।

0: Lumbu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइफे नला विश्वासी समक बसुगो टुटप तबका देता परमेश्वर से न्युशुबा मुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनलाई क्षण गर्दैला श्रृङ्खला अङ्क 31 रिराङ्गी स्वागत मुला नबियोग तामाङ लालन मिगदे न्यु मुलाकी परमेश्वर चाहिँ थेरङमा मिगदेला सेवारी न्युबरी सेम लसु मुला जुनी लानन च्याङना कमजोर गदे मुला उच्च सम्मानित जहान ज्ञान हामुला थे सत्य आइन्दा जब परमेश्वर चाहिँ हलाइदा सेवकाइला लागिरी न्यु मुला थे मिसे थे याङमा योग्यता प्रमाण लबरे तिगै लादो मुला रोसे न्यु मुसुला तिगै लादे मुला तिग्द विषम थेरी गेन गेन आवश्यकता मुला परमेश्वर चाहिँ सामान्यतया चु लुइला उच्च देन शक्तिशाली मिगदेसे रङला गे लबरी अपिन मुला परमेश्वर चाहिँ थे मिगदेसे न्यु मुसुला जो क्युबा मुला जो टुटप तबा जहान ग्याम हामुला देन जो द संसार से मुलुक री मूल रूप री अस्वीकार लबा मुला परमेश्वर से सामान्यतया चु संसार ला उच्च देन शक्तिशाली मिगदेसे रंगला गे लवरी अपिन मुला परमेश्वर से थे मिगदेसे न्यसु मुला जो क्युबा मुला जो टुटप तबा जहान ग्याम हामुला देन जो द संसार से मूल रूप री अस्वीकार लला मुला न्यायकर्ता 6:15 गिरोहेन से उत्तर पिंजी रंग यनगो गा हरंगलासी इजरायल दा तोना लबरी हमला नाला गोत्र दा सीगो थे मी युद्धरी बेनन भन्दा कमजोर मुला थे दे गाला आवला दिमरी गा बेनन भन्दा जजा मुला गिदोन दचु तामला हाजीबाई अर्था आरे मुबा कि परमेश्वर से थेदा अगुवाल रूपी महत्वपूर्ण सेवकायला भूमिका निर्वाह लबरी दमसी मुला तसै परमेश्वर हाइमा द मन याङ देन धीरजी मुस्युला रो याङला हिचकिचवाट याङला लोङबा देन अयोग्यताला भावना गोस्युमुला गिदोन द था मुला कि रो लानन नोन गरीब जहानला बेनन भन्दा च्याङना महत्वपूर्ण सदस्य हिन्दा वै गोबरी तिगा था आरेमुबा विषम परमेश्वर से याङला व्यक्तिगत योग्यतालाई वास्ता आलास्युमुला रो नम्र मिगदे माइबन मुस्युला थेनिगदे जो रङला क्षमतरी भन्दा रोरी भरोसा थानबरी तयार मुला न्यायकर्ता 6:16 परम प्रभुसे जवाब पिन्छुजी ना एदेन ताला थेन्दे एसे बेनन मिध्यानी गरेदा मिदा सही सेला परमेश्वर से धनी जहानला प्रभावकारी बुद्धि मान आत्मिक अगुवा गदे मैसुबा अरे रो थे निगदेदा मैसु मुला जो थेनिगदेदा नेतृत्व लाबरे रोल शक्ति री भरोसा थानबरी इच्छुक मुला याङ मोसारी चुला अर्को उत्कृष्ट उदाहरण नाङला व्यवस्था 3:10 चु कारण दर्यम गाला प्रजा गाला जनता अर्थात इसराइली गदेदा मिश्र ग्याम तेसी बाबरी गा एदा फारो हानङ पुइभन मुला गाई लानन क्रिस्चियन गदेदा नाङब मुला जोसे रङ द सेवाला लागि नियुक्त लामुला बेनन साचो बलवार याङमन नियुक्त आतामुला थेनी गदे येसु ख्रिस्ट याम याङ द नियुक्त लब हिन्दा सेवला गे लाबरी रङ द नियुक्त लब याङला ग्ला आइन्द